Spencer.

Yeah.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: कभी भी किसी से भी बात करो ना, मुस्कुराओ जरूर। आपके मुस्कुराने से उसका आधा दुख तो दूर हो जाएगा। चैरिटी बिगिंस एट होम। किसी से भी बोलो, साथी से, ब्राह्मण से, चाहे अज्ञानी से, मुस्कुराता चेहरा रुए गुलाब। सीरियस हो के नहीं बोलो, क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, नहीं। मुस्कुरा के बोलो। मुस्कुराने का स्टॉक है, खत्म तो नहीं हो गया। मुस्कुराया हुआ चेहरा कितना अच्छा लगता है, जोश वाला चेहरा दूसरा देख के हट जाना चाहता है। और मुस्कुराए हुए चेहरे के नजदीक जाने जाएंगे तो आपको अभी का मुस्कुराता हुआ चेहरे का फोटो निकाल के देवे। वो फोटो अपने साथ रखेंगे या कागज का रखेंगे या दिल का।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

Revise.

Realization.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: Yes.

切开它，再洗嘞，给啥呗？

नोट करना, सुबह को उठते चेक करो, सबका जैसा

Che ci trome. Sada. Da beltace. Tua por me. Che

che se bio shit guys up shit legen mat

0: sabí, pero legen.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

Chatty.

Prosta kísérti. Kiszi mi prkárki.

Yes.

Mannes.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: खुशी में नाचते भी रहना और दिल खुश मिठाई बांटते भी रहना, साथ में जो भी संबंध संपर्क में आए उसको कोई न कोई गिफ्ट देना, कोई हाथ खाली नहीं जाए। कौन सी गिफ्ट देंगे? आपके पास गिफ्ट तो बहुत है, गिफ्ट स्टॉक है। तो देने में कंजूस नहीं बनना, देते जान फ्राक दिल बनना, किसी को शक्ति का सहयोग दो, शक्ति का वाइब्रेशन दो, किसको कोई कौन का गिफ्ट दो, मुख से नहीं लेकिन अपन ने चेहरे और चलन से। और किसको चलो कोई कोने इमर्ज नहीं भी हो, शक्ति इमर्ज नहीं भी हो, तो कम से कम छोटी सी सौगात भी देना। वो कौन सी शुभ भावना और शुभ कामना, शुभ कामना करो कि ये मेरा सोचेंगे तो अशुभ भावना से शुभ भावना बन जाए। इस भाई बहन का भी उड़ती कला का पाठ हो जाए। बच्चे कहते हैं कि हम देते हैं वो लेते नहीं, अच्छा शुभ भावना नहीं लेते हैं, कुछ तो देते हैं ना, चाहे अशुभ बोल आपको देते हैं, अशुभ वाइब्रेशन देते हैं, अशुभ चलन चलते हैं। तो आप हो कौन? आपका ऑक्यूपेशन क्या है? विश्व परिवर्तक हो, सभी विश्व परिवर्तक है। धंधा आपका क्या है? विश्व परिवर्तक है ना, तो विश्व को परिवर्तन कर सकते हो। और उसने अगर आपको उल्टा बोल दिया, उल्टा चलन दिखाई, उसका परिवर्तन नहीं कर सकते हो। पॉजिटिव रूप में परिवर्तन नहीं कर सकते हो, नेगेटिव को नेगेटिव ही धारण करें। सदा जमा रखो। आप दे दो, परिवर्तन कर लो तो आपका टाइटल जो विश्व परिवर्तक है वो प्रैक्टिकल में यूज होता जाएगा और ये पक्का समझ लो कि जो सदा हर एक को परिवर्तन कर अपना विश्व परिवर्तक का कार्य साकार में लाता है, वो ही भविष्य में

0: Western tatapan gifted Titi Chow.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: भक्त ने देखा कि कमजोरी देते तो लेकिन फिर वापस ले जाते थे। देखो वो वापस नहीं आता, अकल वाला है ना वो। 5000 वर्ष के पहले वापस नहीं आएगा। तो आप पुरानी चीजें वापस क्यों देते हो? जिसके देंगे सोचेंगे कि ये मुझे छोड़े या मैं छोड़ू, कौन छोड़ेगा कौन? अच्छा अगर फिर भी वो हवा में उड़ती हुई आपके पास आ जाए दोबारा, फिर क्या? फिर रख देंगे ना, रखेंगे कि फेंक देंगे, फेंकेंगे। तो ये चीज क्यों नहीं फेंकते? अगर गलती से आ भी गई तो जब पसंद नहीं है और आपको वो चीज आपके पास फिर से आती है तो क्या आप गंदी चीज संभाल के रखेंगे? रखेंगे? कोई भी किसको गलती से भी अगर कोई खराब चीज दे देवे तो क्या करेंगे? अलमारी में सजा के रखेंगे? नहीं, नहीं। फेंक देंगे ना उसकी meteorit. Jeg badet ikke det var på slutt.
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: आज शिवरात्रि।

Happy birthday.

Fascista. Tigbireye. Or tigre jai debi. Koi koi bachoga. इस बात के ऊपर अच्छा ध्यान है क्योंकि अभी आप निमित्त बने हुए बच्चे Bye.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: कभी कभी लेफ्ता बन जाए, ये हो ये करे, ये मदद दे ये बदले, तो मैं बदलूं, ये बात ठीक हो तो मैं ठीक हूँ, ये लेफ्तापन दातापन नहीं।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: अभी किसमें होशियार बनेंगे? मनसा से नंबर आगे लेना, पीछे नहीं रहना। इसमें कोई कारण नहीं, समय नहीं मिलता, चांस नहीं मिलता, तबीयत नहीं चलती, पूछा नहीं गया, ये कुछ नहीं, सब कर सकते। बच्चों ने खेल खेला था ना, दौड़ लगा देखा खेला था ना, अभी इसमें दौड़ लगाना, मनसा सेवा में दौड़ लगा। अभी टीचर्स को मनसा सेवा में रेस करनी है, लेकिन ऐसे नहीं करना कि सारा दिन बैठ जाओ मैं मनसा सेवा करने।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: जैसे शिवा ओबक उत्साह से कर रही है, ऐसे सेवा और विश्व सेवा। स्वसेवा

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: आकाश में ये विशेष स्मृति में इमर्ज करो, मर्ज नहीं इमर्ज करो के सब तरफ से सफलता मुझे श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा का अधिकार है, इस निश्चय से नशे से रोहन नशे से आप माने नशा नहीं रोहन नशे से उड़ते चलो।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: हो सकता है तो 7 मिनट करो, मिनट करो, 5 मिनट की भी छुट्टी, 5 तक भी छुट्टी, लेकिन अगर कोई भी समय 10 मिनट हो तो अच्छे, ऐसा समय आएगा जो आप लोगों को खुद अपने लिए और विश्व के लिए भी किरणें देनी पड़ेंगी। इसीलिए बाप दादा छुट्टी देते हैं, जितना ज्यादा समय कर सको उतना प्रैक्टिस करो, क्योंकि अभी का बहुत समय भविष्य का आधार। ठीक है, मुश्किल लगता है ना, कोई बात नहीं है, अभी तो कोई अर्जा नहीं। और बाप को सुनाया ये बहुत अच्छा की, क्योंकि मानो 10 मिनट बैठ नहीं सको, सोच में ही चला जाए तो 5 मिनट भी गए। इसीलिए बाप दादा किए कम से कम 5 मिनट से कम नहीं करना, जितना बढ़ा सको उतना बढ़ा। ठीक है, स्पष्ट हुआ? हुआ स्पष्ट? क्योंकि बाप दादा हर एक को बहुत श्रेष्ठ स्वरूप में देखते हैं। बाप दादा ने निशानी है हर एक बच्चे को कितने स्वमान दिए।
4: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: कभी कभी पापा को अच्छा नहीं लगता, आना चाहिए।
2: कैसे आपकी आ गया?
1: क्योंकि बाप चाहते हैं कि हर आत्मा आगे से आगे बढ़े। आएंगे जाएंगे, मिलेंगे, खुशी होगी, चेहरा खुशनुमा हो जाएगा और विचार खत्म हो जाएंगे। विचार करते हो ना, विचार करते हो ना, वो खुश मिजाज हो जाएंगे, क्योंकि फिर भी ज्ञान मिला हुआ है ना। खुश आप दोनों को तो ऐसा खुश रहना चाहिए जो कोई पूछे कहाँ से मिली खुशी। होना चाहिए। अच्छा, बहुत अच्छा है। अच्छा, खुश रहेंगे ना तो प्रॉब्लम सब खत्म हो जाएंगे, गारंटी है। सोचते हो ना, सोचते हो,
3: सोचते हो,
4: सोचते हो,

0: खुश रहो, खुश रहो। जितना खुश रहेंगे उतनी तबीयत भी अच्छी, और सभी देख करके भी खुश हो जाएं।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: पाप में तो पक्का निश्चय है, उसकी विशेषता है निरंतर। मैं पाप का और पाप मेरा, ये निरंतर विजय सफलता की विजय।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: संगठन सभी जगह मजबूत करो, चाहे दो है चाहे चार है चाहे बारह है, लेकिन दो का भी संगठन ऐसा मजबूत हो जो दोनों

0: geval. Ik doe mijn slechtste panai. Melanie koosjes kan. Je zit dat ik ook jad kardena. Kio jad kardeo. Oski vishesta. Sabko apna ban diya. Hai na aise. Sabhi ko apna ban diya na. To kyun aap sabhi nahi kar sakte ho? Jaise sabhi ne anubhav kiya. Hamari dadi hai. Aise nahi Madhuban ki dadi. हमारी ऐसे सभी ब्राह्मण एक दो में अपनापन अनुभव कर ये दादी को याद इसी को याद कहा जाता है समान बनना विशेषता धारण करना इसको कहते हैं याद ठीक है ना हर एक यही सोचो सब अपने अपनापन महसूस ऐसे नहीं ये तो पता नहीं कौन है क्या है एक परिवार है ना दादी भी सभी सेंटर पर तो नहीं रहती थी ना एक ही स्थान पर रहती थी मधुबन में लेकिन सभी को अपना बन दिया तो आप सभी भी अपने अपने स्थान पर रहते फिर भी अपना बन दे सकते ये दिल की स्थिति
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: Chacho। जो समझते हैं दृढ़ संकल्प कर रहे हैं। अच्छा आप घड़ी घड़ी निकाल लेंगे ना तो निकल जाएंगे, रख नहीं दो अंदर क्या करें कैसे करें, निकलता नहीं है ये, नहीं निकालना ही है। तो दृढ़ संकल्प करेंगे, अभी हाथ उठाओ जो करेगा, मन से हाथ उठाना, पैर से नहीं उठाना, मन से आप नहीं उठा रहे हैं।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बड़ी दिलवा
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा ने पहले भी सुनाया

Shit.

Fottemi.

しょうか。

0: Siesta. Apa? Sabka kitna? Samarpan tamahina.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: अभी ऐसी अनुभूति शुरू करें।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: कभी भी कमजोरी आ जाए, आने नहीं देना, गेट बंद, गेट तो पता है ना, बंद करो, डबल बंद, डबल ताला लगाना, आजकल सिंगल ताला नहीं चलता, एक इसी रखने का। ये तो अलमेटी ताले लगा देना, कार्ट्रिज का नहीं काट का।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम,
3: सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: दादी कहती थी, मेरी ये अभी तक भी दिल है कि हर एक मधुबन वाला शरत में कोई भी कमी अभी रह गई है उसका तो पुरशरत करना है, लेकिन मैं एक बात चाहती हूँ मधुबन वालों से। क्या चाहती हूँ? एक एक मधुबन वासी पाप समान बन जाए। वैसे तो सभी को बनना है, लेकिन मधुबन विशेष है। मधुबन वाले को दादी से प्यार था, ये दादी कहती थी, मुझे पता है। जैसे मम्मा ने लक्ष्य रखा, पापा ने कहा, मम्मा ने किया, ये तो मधुबन वाले जानते ही है। ऐसे ही अमृत वेले से लेके रात रात तक ऐसा कोई संकल्प बोल कर्म नहीं लावे जो दादियों को या बाप को या किसी को भी पसंद नहीं हो। ये हमारा संदेश खास मधुबन वालों।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा ने देखा है सेवा की रुचि, सेवा का उमंग उत्साह अभी भी बच्चों में है। अच्छी सेवा के समाचार भी बाप दादा सुनते हैं, लेकिन बाप दादा तीव्र गति में आगे बढ़ने के लिए बच्चों को विशेष अटेंशन दिलाते हैं कि सिर्फ एक वाचा की सेवा नहीं, सेवा करते हो तो एक ही समय पर तीन सेवाएं इकट्ठी करो। मनसा द्वारा सकाश दो, वाचा द्वारा ज्ञान दो और कल्पना अर्थात अपने संपर्क द्वारा, संबंध द्वारा, चेहरे द्वारा ऐसी सेवा करो जो उसका भी प्रभाव साथ साथ सेवा में हो। एक समय में तीन सेवा इकट्ठी करो, क्योंकि अभी आत्माएं सेवा के लिए चाहती है कुछ फर्क हो, कुछ बदलना चाहिए। तो एक समय पर तीनों सेवा कर सकते हो, कर सकते हो। चेक करते हो कि जिस समय वाणी की सर्विस करते उस समय मनसा द्वारा और कल्पना अर्थात संपर्क संबंध द्वारा भी सेवा हो रही है, होती है साथ साथ। एक ही समय तीन सेवा, तो अभी अटेंशन प्लीज। कभी कभी नहीं।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
2: रोम रोम में राम रमे थे रामा नाम तुम्हारा, रोम रोम में राम रमे थे रामा नाम तुम्हारा, सबका रिश्ता प्रभु से जुटाना यही था काम तुम्हारा। मन से मन की तार मिली थी बाबा बाबा कहती, दिलाराम बाबा का दादी, दिल था धाम तुम्हारा, दिल था धाम तुम्हारा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: लेकिन पानी भी नहीं।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

Mr. Tarts, os que eu para

छोटे-छोटे वायरस संकल्प है, लेकिन कभी भी तो का समय पर दे सकते, इसलिए वायरस को भी कब करूं, टाइम क्योंकि इस शिवरात्रि पर बाप को कोई सौगात तो देंगे ना, देंगे, हाथ उठाओ, तो बाप दादा यही सौगात पसंद है ना, पसंद है, हाथ उठाओ, पसंद है तो सब पास हो जाएंगे, पसंद है तो पसंद चीज तो दिल से की जाती, तो बाबा

再见。

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: Yeah.

सभी के दुआओं से

स्वरूप हो, सच्ची सेवादारी हो, स्वार्थी सेवा नहीं। एक होता है कल्याण की भावना की सेवा और दूसरी होती है स्वार्थ से मेरा नाम आ जाएगा, मेरा फोटो आ जाएगा अखबार में, मेरा टीवी में आ जाएगा, मेरा ये हो जाएगा, कई साधन ब्राह्मणों में नाम हो जाएगा। ब्राह्मण ही बहुत आगे रखेंगे, पूछेंगे ये सब भाव स्वार्थी सेवा के लिए जो सच्चा सेवादारी है। आजकल के हिसाब से शुरू की स्थापना के बाद दूसरी थी, लेकिन इस समय के प्रत्यक्षता के हिसाब से अभी सेवा आपके पास आएगी, आप सेवा के बिचारी नहीं, आपके पास सेवा

आपका ऐसी जिम्मेदारी जो स्वार्थ भाव नहीं हो। मुझे चांस मिले, मेरे को मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलता? मिलना चाहिए। ये ऐसी संकल्प को भी स्वार्थ कहा जाए। ब्राह्मण परिवार में आपका नाम नामी ग्रामी नहीं, सेवादारी हो अच्छी, लेकिन नाम नहीं है आपका। लेकिन बाप के पास तो नाम है ना, जब बाप के दिल पर नाम है तो और क्या चाहिए। और सिर्फ बाप के दिल पर नहीं, लेकिन जब फाइनल में नंबर मिलेंगे तो आपके नंबर आएंगे। क्यों? कि बाप दादा ये नहीं देखता, हिसाब रखते हैं। चांस नहीं मिला, आप राइट हो, लेकिन आपको चांस नहीं मिला तो वो भी नोट होता है। और मांग के चांस लिया, वो किया तो सही, लेकिन वो भी मार्क्स कट होते। ये धर्म राज का खाता कोई कम नहीं, बहुत सुख है।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बाप सदा बच्चों को कहती है, कभी भी अकेले नहीं बनना, सदा साथ है, साथ रहना ही। अकेले होंगे तो माया अपना चांस लेती, और साथ है तो स्वयं लाइट हाउस साथ है। उसके आगे माया दूर से
3: जाती, नजदीक भी नहीं आ सकती।

0: अच्छा लगता है ना साथ में।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: ये भाषा नहीं कहना, ये ऐसा किया ना, तभी ऐसा करना पड़ा। सने की वजह थोड़ा थोड़ा थोड़ा कहना पड़ा, बाबा शब्द नहीं बोलता, ये करना ही पड़ता।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: जिस भी सेवा स्थान का सेवक का वृद्धि होती है और निर्विघ्न होती है, उसका कारण क्या होता है जानते? सेंटर्स में VIP की सेवा बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन स्टूडेंट की पालना कम करते हैं, इसीलिए स्टूडेंट पढ़ते नहीं है और स्टूडेंट रेगुलर सेवा के उमंग उत्साह में नहीं रहे। क्लास करेंगे, जो कहेंगे वो करेंगे, लेकिन अपने उमंग उत्साह में नहीं है। तो ये रिजल्ट है पालना की। मुबारक।
3: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: अभी अभी आज के दिन चेक करो मैं कौन, मैं फ्रिस्ता। यही सभी चेहरा और चलन बाप के सामने, विश्व के सामने दिखाना है। तो सभी बाप दादा के इस मुबारक को मैं कौन बोलो, फिर से याद करना मैं कौन, मैं फरिश्ता। तो फरिश्ता हूँ और फरिश्ता रूप से बाप समान संपन्न संपूर्ण बनूंगा ही, सभी को पदम पदम गुना मुबारक हो, मुबारक हो।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा का ये संकल्प है कि इस शिवरात्रि पर या एक सप्ताह पहले या एक सप्ताह पीछे इन दिनों में अपन ने परिचित अपने मोहल्ले वाले अपने दफ्तर के कार्य करने वाले साथी इन्हों को संदेश जरूर दो कि अगर बाप से वर्षा लेना है तो ले लो, ये संदेश जरूर दे दो। आपके मोहल्ले में कोई ऐसा नहीं रहे जो कहे कि हमको अभी लास्ट में क्यों संदेश दिया, थोड़ा पहले तो देते तो हम भी कुछ बना तो लेते, नहीं तो लास्ट में तो सिर्फ अहो प्रभु कहते रहेंगे। आप आए लेना देते रहे तो इस शिवरात्रि पर किसी भी विधि से ऐसा प्रोग्राम आपस में बनाओ जो पहचान वालों को संदेश मिल जाए, फिर राह उनकी तकदीर। लेकिन आपने अपना कार्य पूरा किया तो हर एक को ऐसे किसी भी रूप में औरों को संदेश पहुंच जाए, फिर जैसी नेचर जैसा स्वभाव उसी परमान अपने अपने तरीके से संदेश जरूर दो। बड़ा दिन है, खुशखबरी आपको सुनाते तो ये ओलेना निकल जाए। अभी भी प्रोग्राम करते हो तो क्या कहते हैं, ऐसे भी कहती है अभी भी कि हमको तो अभी पता पड़े आपने पहले क्यों नहीं किया। इसलिए बच्चों का बाप दादा का जन्मदिन है, जो पुराने है अपना जन्मदिन कौन सा मनाते, शिवरात्रि मनाते है ना। तो इतनों के जन्मदिन पर ये संदेश देने की मिठाई बांटो, ठीक है? बांटेंगे वंचित नहीं रहे किसी भी विधि से। फंक्शन करो या पोस्ट द्वारा भेजो, लेकिन कोई रहे नहीं कि किसी भी साधन से उनको संदेश जरूर पहुंचाओ। वो आप आपस में रहकर तीन चार तरीके बनाओ, फर्क वाले भी अपने सभी कनेक्शन वालों को शिवरात्रि के महत्व का संदेश जरूर दे। पसंद है आज?
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

corazón que hacia ti. Pate con si va.

孙子。

जीवन के संस्कार शूद्र जीवन के संस्कार।

primero.

संस्कार जिनको आप

भी पुराने नहीं है, आप श्रेष्ठ आत्माओं के पुराने ते पुराना संस्कार अनादि और आदि संस्कार Sons.

0: बातें नहीं सोचो, ये कैसे होगा, ये क्या होगा, आप अपने को।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

forse sei.

उसने गलती की, लेकिन आपने जो फोर्स दिखाया, क्या वो गलती नहीं है? उसने फोर्स से बोला, जिसको क्रोध का अंश कहेंगे, तो वो राइट है। क्या गलत गलत को ठीक कर सकते? आजकल

Essen.

Peter.

मीठी वृत्ति, मीठी दृष्टि, मीठा संबंध संपर्क,

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: सेंटर तो सब सेफ है,
2: सब ठीक है, ब्राह्मण परिवार भी ठीक है।
1: फिर भी बॉम्बे बाप का बाप का परिवार है, लेकिन जो बाप ने कहा फुल स्टॉप और तपस्या, इसको जरूर बनाना। ये तो कुछ भी नहीं है, घर से बाहर नहीं निकल सकेंगे, खिड़की नहीं खोल सकेंगे तो क्या करेंगे।
2: गुलाबा सेंटर में तो बाहर नहीं निकलते हैं अभी, वहाँ हमारी बहनें भी जो है वो बाहर नहीं निकलती।
1: इससे बहुत कुछ होना है।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, वर्णन भी करते हो।

Yeah.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: इस वर्ष की ये लास्ट मीटिंग है, लेकिन दूसरी

Cosa

0: भावना से टोकरे के रूप से नहीं पूछना। शुभ भावना से एक दो के सहयोगी बन, एक दो को आगे बढ़ाने की शुभ भावना से इशारा दे।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा तो कहते ही है कि सब अचानक होना है। कोई बच्चे समझते हैं अचानक अचानक भी बहुत समय हो गए, अभी होना चाहिए। लेकिन अचानक तब हो जब बच्चे भी बाप समान बन जाए। आपकी सूरत मूरत एक एक बोल बाप को प्रत्यक्ष करे। हो जाना तो है, हो नहीं है, अभी सिर्फ निमित्त बनना।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: आज बाप दादा अमृत वेले चक्कर लगाने गए, क्या देखने गए कि बाप दादा ने स्वमानों की बहुत बड़ी माला दी। अगर एक एक स्वमान में स्थित होके उस स्थिति में बैठो चलो तो स्वमान कहती जाओ और माला घुमाते जाओ तो बहुत मजा आएगा। स्वमान की लिस्ट रखी है लेकिन एक एक स्वमान कितना बड़ा है और किसने दिया है। वर्ल्ड आलमाइटी अथॉरिटी ने एक एक बच्चे को अनेक स्वमानों की लिस्ट दी, उसको यूज करो क्योंकि और कोई अथॉरिटी नहीं जो इस स्वमान को आपके कम कर सके और किसी को भी इतने स्वमानों की माला नहीं मिली। तो बाप दादा ने देखा सत्ययुग में तो राजभाग मिलेगा लेकिन स्वमानों की माला संगम युग की देन। बाप दादा जब भी बच्चों को देखते हैं तो हर एक बच्चों के स्वमान के स्थिति से देखते हैं। वाह बच्चा वाह, तो स्वमान के मैं कौन, कभी कौन सा स्वमान सामने रखो, कभी कौन सा स्वमान सामने रखो और चेक करो। तो आज अमृत वेले जो विशेष स्वमान बुद्धि में रखा उस स्वमान खजाना है ना, इसको यूज किया क्योंकि खजाना भरने का साधन है। जितना खजाने को कार्य में लगाएंगे उतना खजाना बढ़ता है। तो आज बाप दादा देख रहे थे कौन कौन बच्चा है, किसके पास स्वमान की स्मृति की माला बड़ी थी, किसके पास छोटी। जहां स्वमान होगा वहां देवान खत्म हो जाता। तो आज बाप दादा ने चक्कर लगाया और देखा जैसे स्वमान का खजाना है ऐसे एक एक शक्ति एक एक गुण इस्तेमाल करो, उसको कार्य में लगाओ। तो ये जो प्रॉब्लम होती है माया आ गई, माया आ नहीं जाती लेकिन माया ने बाप को सुना है कि मेरे को आह्वान करते है तब जाती हूँ, ऐसे नहीं जाती। कोई भी हल्का संकल्प करते है माना माया को आह्वान किया, शक्तियों को छोड़ता है तो तो माया को आह्वान किया, चाहते नहीं है लेकिन आ जाती। तो बलवान कौन, चाहते नहीं है लेकिन आ जाती। तो माया बलवान हुई या आप, तो आज पुराना वर्ष समाप्त हो रहा है, नए वर्ष में नया उमंग, नया उत्साह, क्योंकि संगम युग का गायन है। एक एक दिन दिन उत्साह भरा हुआ है, अर्थात उत्सव।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सिक्कियां बहुत नहीं दो कि मैं करूं, सिक्कियां देने में एक दो को भी समोचा रहे, लेकिन कि मैं के साथ सिक्कियां दो। मुरली सुनाने कोर्स कराने या जो भी आप प्रोग्राम्स चलाते हो वो भले सिक्का दो, लेकिन आपस में जब कारोबार में आते हो तो किमिया के साथ सिक्का दो। सिर्फ सिक्का नहीं दो, रहम दिल बन के सिक्का दो तो आपका रहम ऐसा काम करेगा जो दूसरे का कमजोरी की किमिया हो जाएगी। समझा?
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा। सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: हाथ उठाने में तो हुशार नहीं, बाप दादा खुश है।

0: Purusharath. Bab Dada khush hote hain. Koi koi bachcha abhi bhi dekhte hain Purusharath mein baatein aate thora kamzor ban jaate lekin nahi bahadur bano bahadur banao से कम जो रेगुलर आने वाली है उनों को दीवार पुरुषार्थ का लक्ष्य है ऐसे नहीं है नहीं शरद की बातें सोचते हैं लेकिन करने में थोड़े ठीक।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: प्यारे प्यारे बाप दादा सबको बिंदी का तिलक दे।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बदल जाए

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: तीन मास का अभ्यास, सदा काल का अनुभवी बना देगा अगर अपन ने उमंग उत्साह से किया तो। मजबूरी से किया तीन मास पास करने है, फिर तो सदा नहीं होगा। लेकिन उमंग उत्साह से किया तो सदा काल के अनादि अविनाशी संस्कार इमर्ज हो जाएंगे। समझा?
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: απανέντελμε φαϊτάκαρο και αγαπήπη κουσινέκαμε.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप सेवा के बिना रहता है, याद के बिना भी नहीं रहता। जितना बाप याद में रहता उतना आप मेहनत से रहते हैं, लेकिन मेहनत से, अटेंशन से। और बाप के लिए है या परम आत्मा के लिए है, आत्मा है, नंबर वन आत्मा है, तो है स्वयं बच्चों के याद के बाप रह ही नहीं सकता।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: आज के दिन बाप यही चाहते हैं कि हर बच्चा आज अपने दिल में दृढ़ता को लाके, ये दृढ़ संकल्प करो कि हमें व्यर्थ संकल्प और व्यर्थ समय
3: जाता है।

0: उसको बचाना, अर्थात समापति का समय समीप लगा।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बाप दादा ने देखा, पहले भी कहा है, योग सब लगाते हो, लेकिन अब आवश्यक अपने किरणों द्वारा

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: जो सदा खुश रहती है वो हाथ उठाओ, सदा खुश खुश रहती है, खुशी तो रहती है ना, खुशी तो है ना, खुशी तो नहीं जाती, खुशी नहीं जानी चाहिए, क्योंकि खुशी परमात्म गिफ्ट है, परमात्म गिफ्ट संभाल के रखनी चाहिए। बात बात में हो गई खुशी क्यों जावे, बात पावरफुल है कि खुशी परमात्म गिफ्ट, तो ये भी कोशिश करो खुशी नहीं जाए, सदा फेस खुश दिमा रहे, खुश दिमा रह सकती है, खुशी रह सकती है, रह सकती है, कांधे लाओ, रह सकती है, अटेंशन देंगे तो हो जाएंगी ना, हो जाएंगी, हो जाएंगी, पीछे वाले, पीछे वाले हो जाएंगे। तो बाप दादा सभी के लिए कह रहे, एक मास के बाद सभी से ये चार्ट मंगाएंगे कि एक ही मास खुश रहा। आज की तारीख याद करना, सभी को कह रही है, सिर्फ फॉरेनर्स को नहीं। एक मास की ट्रेल करो, कोई भी बात आवे दिल में नहीं समाना, समझना बात राइट है रॉन्ग है क्या करना है, लेकिन दिल में नहीं समा, दिल में समा जाती है तभी खुशी जाती, समझने वाला खुश रहेगा और बात को समझ के पूरी करेगा। तो एक मास का पेपर है ये, खुश रहना है, हो सकता है अलबेला बन छोड़ो, हो जाएगा, हो जाएगा, नहीं करना ही है, क्योंकि बाप दादा जानते हैं कि समय आप ब्रह्मांडों के रोकने से रुका हुआ है, समय को समीप लाने वाले आप, तो तीव्र पुरुषार्थ करो, दृढ़ संकल्प करो, तो हो जाएंगे। रोज ये गीत याद करो, आप घर चलते

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

Sí, va.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: जब कंबाइन है सर्वशक्तिवान बाप दादा, कंबाइन है फिर अकेले क्यों बन जाते अगर आप कमजोर भी हो तो बाप दादा तो सर्वशक्तिवान है ना, अकेले पर

0: समय सहयोगी शिवबाप परम धाम से आए क्यों है, किस लिए आए? बच्चों के सहयोगी बनने के लिए आए। देखो ब्रह्मा बाप भी
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: ब्रह्मा बाप को देगा, कैसा भी बच्चा हो, शिक्षा दातापन शिक्षा भी देते, लेकिन शिक्षा के साथ प्यार भी दिल में रखते और प्यार की निशानी है कोई पांव का प्यार नहीं, लेकिन प्यार की निशानी
0: रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: देखो, निश्चय का पर्तक्य परवान है, रूहानी नशा
4: अच्छा।

0: आसमान बने हैं, याद है अनगिनत द्वार बने हो, तो ये नशा रखो, हम ही बने
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: ये आशी है दृष्टि लेना बाबा से, समर्पित वालों की ये आशी है।
2: लेकिन दृष्टि लेनी है तो दृष्टि में बाप दादा को सदा रखना है, ऐसे ही दृष्टि नहीं लेनी है। दृष्टि लेना अर्थात दृष्टि में बाप को समान, ऐसी दृष्टि लेना।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: तो आप सबको पता है जगदम्बा माँ का एक सदा धारणा का सलोकन रहा है, याद है?
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप और बच्चों का एक दिवस जन्म, यही वंडर है। तो आज आप सभी सालिग्राम बच्चे को मुबारक देने आई हो। बाप आपसे मुबारक लेने आई हो। देने भी आई हो, लेने भी आई हो। साथ साथ की

साथ साथ चलें।

Yes.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

अच्छा वीडियो जो अच्छा वीडियो जो उसमें टाइम चला जाएगा। कई बच्चे बहुत बिना बिना पोस बदलते रहते, बाप देखते रहते हैं, सोचते हैं अच्छा वीडियो बने, सोचते हैं शरीर माना।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: ये संगम युग की सौगात, बाप और बच्चों का मिलन, सारे कल्प में एक ही बार होते, संगम युग में बार बार होती है, लेकिन एक ही संगम युग में होती है। और जीवन कितनी सरल है, कोई हठ योग क्रिया विरिया नहीं करनी है, मेरा बाबा बस। अब मेरा तो भूलता मुश्किल ही है, बाप को मेरा बना दिया तो भूलने की मेहनत खत्म। छोटी सी चीज भी मेरी होती है तो कितनी याद रहती है।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: क्या न सूर्य इस

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: सहज को स्वयं भी मुश्किल बनाते, मुश्किल है नहीं, मुश्किल बनाते। जब बाप कहते हैं जो भी बोझ लगता है वो बोझ बाप को दे दो, देना नहीं आता। बोझ उठाते भी हो फिर थक भी जाते हो, फिर बाप को लेना भी देते हो। क्या करें, कैसे करें, अपने ऊपर बोझ उठाते क्यों? बाप ऑफर कर रहा है अपना सब बोझ बाप के हवाले कर, तीसरे जन्म बोझ उठाने की आदत पड़ी हुई है ना, तो आदत से मजबूर हो जाते, इसलिए मेहनत करनी पड़ती। कभी सहज कभी मुश्किल, या तो कोई भी कार्य सहज होता है या मुश्किल होता है। कभी सहज कभी मुश्किल क्यों? कोई कारण होगा ना, कारण है आदत से मजबूर हो जाते। और बाप दादा को बच्चों की मेहनत करना ये सबसे बड़ी बात लगती, अच्छी नहीं लगती। मास्टर सर्वशक्तिमान और मुश्किल, टाइटल क्या देते हो अपने को? मुश्किल योगी या सहज योगी? नहीं तो अपना टाइटल चेंज करो, हम सहज योगी नहीं है। कभी सहज योगी है कभी मुश्किल योगी। और योग है क्या? याद करना है ना बस ना, और पावरफुल योग के सामने मुश्किल हो ही नहीं सकता। योग लगन की अग्न है, अग्न कितना भी मुश्किल चीज को भी परिवर्तन कर देती। लोहा भी बोल्ट बन जाता है, ये लखन की अगन क्या मुश्किल को सहज नहीं कर सकते? कई बच्चे बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, बाबा क्या करें, वायुमंडल ऐसा है, साथी ऐसा है, हंस बगले है, क्या करें, पुरानी हिसाब किताब है। बातें बहुत अच्छी अच्छी कहते, बाप पूछते हैं आप ब्रह्मांडों ने विश्व परिवर्तन करेंगे, तो जो विश्व परिवर्तन करता है वो अपनी मुश्किल को नहीं मिटा सकता।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बाप दादा ने देखा मेजर रेड्डी का वेस्ट संकल्प, सारे दिन में बीच बीच में चलता है वेस्ट। जेना तो वो अप

is so

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: डबल विदेशी। परसेंटेज के बिना फुल बन गए तो बाप दादा चाहे भारत वाले भी अगर फुल पास हुए तो ब्रह्मा बाबा पता है क्या करेगा? क्या करेगा? बस रफ शाबाश दे देगा और क्या करेगा? क्या करेगा? रोज आपको अमृत वेले अपने पांव में समा दे। बड़ी बड़ी आपको महसूस
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: उससे ज्यादा

It's Jesse.

begin.

your gun.

Señor.

0: isa alabaw ko. Practical Mellow.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: आप भी

假装废了，假把给不得个的，说的给想的，说的给个奶，阿爸那。Say

Jesse. Stop knocking. Adi calme. Bab dada ki taraf se.

Ciao. Sick.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

você. Ese ne. Dios me dio.

Sí.

Nice.

Sarabi. Moccasini.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: आज बाप दादा ने देखा अमृत वेले चक्कर लगाया, चारों ओर का चक्कर लगाए, चाहे विदेश चाहे देश, बाप दादा को चक्कर लगाने में समय नहीं लगता। तो क्या देखा? हिस्सा

0: पावरफुल फ्रिश्ते स्वरूप की स्थिति रही।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा

0: नोटिस नहीं कर सकेंगे। कहीं समझते हैं ना, समय आएगा कर लेंगे, लेकिन नहीं। ये जन्म जन्म का बॉडी कॉन्शियस का अभ्यास उस समय अशरीरी बनने नहीं देगा, इसलिए अभी से कोई भी समय निकाल, सारे दिन में समय प्रत समय जो भी निश्चित करो, एक सेकंड में अशरीरी आत्मा आत्मा स्वरूप में स्थित हो जाए। बॉडी कॉन्शियस अपने तरफ खींचे नहीं, ये अभ्यास सभी को करना है, चाहे पुराने चाहे नहीं, क्योंकि बाप दादा ने कुछ समय से ये बात कही है, लेकिन करना जरूरी, नहीं तो श्रीमद का हाथ पे हाथ दे करके नहीं चल सके। आपका फायदा है, साथ चलेंगे, साथ राज में आएंगे, तो ये ड्रिल सभी को करना।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

Loki.

Eso.

Joker.

समृद्धि में चलते हैं। आप सभी अनुभव से कहते हो

0: दिवस मनाते।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आजकल दुनिया वाले तो स्पष्ट कहती है कि आजकल सच्ची लोगों का चलना ही मुश्किल है, झूठ बोलना ही पड़ेगा। लेकिन कई समय पर कई परिस्थितियों में ब्राह्मण आत्माएं भी मुख से नहीं बोलती, लेकिन अंदर समझती है कि कहां कहां तो झूठ नहीं कहते उसको, लेकिन कहते हैं, समझती है कि यात्रा से चलना पड़ता है। तो यात्रा क्या है? ये तो करना ही पड़ता है। तो वो स्पष्ट बोलती है और ब्राह्मण रायल भाषा में कहती है, मेरा भाव नहीं था, न भावना थी न भाव था, लेकिन करना ही पड़ता है, चलना ही पड़ता है। लेकिन ब्रह्मा नीचे आवे तो पता पड़े लेकिन ब्रह्मा बाप तो साकार स्वरूप सहन करना पड़ता है, झुकना पड़ता है, हार माननी पड़ती है, लेकिन वो हार नहीं है। उस समय के लिए हार लगती है, लेकिन है सदा की विजय। सत्यता के पीछे अगर सहन भी करना पड़ता तो वो सहन नहीं है, लेकिन बाहर से लगता है कि हम सहन कर रहे हैं, लेकिन आपके खाते में वो सहन शक्ति के रूप में जमा होता। से ऐसे समझेंगे हम बहुत अच्छे जाते, हम कुछ चलने की चतुराई आ गई, लेकिन अगर अपना खाता देखेंगे तो जमा का खाता बहुत कम होगा। इसलिए चतुराई से नहीं चलो, एक तो को देख करके भी काफी करती है, ऐसे चलती है ना, तो उसका नाम बहुत अच्छा हो गया, ये बहुत आगे हो गई है। और हम सच्चे चलते हैं ना, तो हम पीछे के पीछे रह गए, लेकिन पीछे रहना नहीं है, वो आगे बढ़ना है। पाप के आगे आगे बढ़ते हो और दूसरों के आगे, चाहे दिखाई भी दो, लेकिन काम किससे है, पाप से या आत्माओं से? किसे काम है? पाप से है। तो पाप के दिल में अर्थात सारी कलप के प्रारब्ध में आगे बढ़ना, और अगर यहां आत्माओं को काफी करते हो आगे बढ़ने में, वो उस समय के लिए आपका नाम होता है, शान मिलता है, भाषण करने वाले लिस्ट में आते हो, सेंटर संभालने के लिस्ट में आते हो, लेकिन इस समय तक सारी के लिए काफी नहीं करूं। यहां नाम नहीं है लेकिन बाप के दिल में नंबर आगे नाम।
2: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

Merci.

सभी का अटेंशन मेजॉरिटी का।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम

Dick.

Kislata.

Oh.

Bárbaro.

puppy. Mukto jao.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

Yep.

0: इस संग के रंग में रहने से जैसे परमात्मा ऊंचे ते ऊंचे वैसे आप बच्चे भी चेते ऊचे पवित्र महान आत्माएं पूज्य आत्माएं बन गई। ये अविनाशी
1: से

0: mal, get off of me.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: कभी भी कोई माया का संकल्प भी आवे तो मन के विमान से शांतिवन में पहुंचना। मन का विमान तो है ना, है ना? सभी के पास मन का विमान है। बाप दादा ने हर ब्राह्मण को जन्म की सौगात श्रेष्ठ मन का विमान दे दिए। इस विमान में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। स्टार्ट करना है तो मेरा बाबा
3: some

0: अभी किसी भी दाम को याद कर लेना, कब उदास हो जाओ तो झुपड़ी में रोरियान करने आ जाना। शक्तिशाली बनने की आवश्यकता हो तो शांति स्तंभ में पहुंच जाना। और वेस्ट बहुत तेज हो, बहुत फास्ट हो तो स्ट्रियाल में पहुंचना। समान बनने का दृढ़ संकल्प उत्पन्न हो, बाप दादा के कमरे में आ जाना।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सभी बच्चों की।

chamactiwi. Oh, shit.

Potvo kirek.

श्रेष्ठ कर्म के कलम से कीजिए। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य शिप।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: पुरुषोत्तम संगम योगी

demnächst.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: जब काम मिलता है तो लिखने में भी मार्क्स जमा होती, अगर नहीं लिखा तो मार्क्स एक्स्ट्रा कम हो गई, नुकसान कर दिया। जो भी डायरेक्शन मिलती है, चाहे डायरेक्ट बाप द्वारा मिलती है, चाहे उसको रिकॉर्ड देना अति आवश्यक है। इसमें न बहाना देना, न अलबेलापन करना आगे के लिए बता देता है कि मार्क्स जमा नहीं। इसलिए इसको मैं तो देना अर्थात महान बनना हल्की बात नहीं करूं। अच्छा फिर क्या कहेंगे बड़े चतुर है बच्चे, कहेंगे बाप दादा तो जानती है ना, जानते तो है लेकिन कहा क्यों, जानते हुए कहा ना। तो ऐसे चुराना नहीं चाहिए। बहुत ऐसी काजे है छोटे छोटे जिसको हाजी करने में एक्स्ट्रा मार्क्स जमा होते। कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो किसी भी पास्ट के संस्कार के वश बहुत अच्छे और मकुत्सा में पढ़ते हैं, लेकिन कोई न कोई सुनहरी धागा, बहुत महीन धागा उनको आगे बढ़ने नहीं देता। वो समझते भी है कि ये महीन धागा रहा हुआ है, लेकिन ऐसी भी पुरुषार्थी है जो छोटी छोटी कामन बातों में हाजी करने से मार्क्स ले लेते, और हो सकता है कि वो इकट्ठी होते हुए वो आगे निकल भी सकते हैं। ऐसे भी बाप दादा के पास एक सैंपल के रूप में है।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अगर पापा शब्द नहीं निकलता तो ज्ञान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। Vale.

0: इसको कहेंगे सेवा का प्रत्यक्ष फल।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: योग में अमृत वेले बैठते मेजॉरिटी ऐसे समय पर अभी ज्वालामुखी योग चाहिए। वो ज्वालामुखी योग अशांति हलचल बढ़ती है। इसलिए अपने इस समय की टॉपिक रखी है, एक परिवार। उसके कुछ तो

अटेंशन खिंचवा रही है। ज्वालामुखी योग

baby.

दिल में वो खुशी की झलक सेवा पुण्य बन रहा है। उसमें चेहरे में खुशी होनी चाहिए। किसी न किसी प्रकार की

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बाप दादा की रोहानी ड्रिल, याद है ना? बन सकते

a mí. Sí.

Rachel. Să dai cartecelul.

inside. Dusra na koi. Isse ekagar. Simmer

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बच्चे क्या करते हैं? कोई कोई सब नहीं, जो वरदान मिला उसको

Vessi

0: स्वरूप बनने में नंबर फोर बन जाते।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बाप दादा और तो कुछ कहते नहीं है, सिर्फ एक ही शब्द कहते हैं, फॉलो करो बस। सोचो नहीं, ज्यादा प्लान नहीं बनाओ, ये करें वो करें, ऐसा नहीं वैसा है, वैसा नहीं ऐसा नहीं। जो पाप ने किया कॉपी करना है बस, कॉपी करना नहीं आता। आजकल तो साइंस ने फोटो कॉपी की भी मशीनें निकाली है ना, फोटो कॉपी है ना यहाँ। तो ये जो चित्र रखते हैं ब्रह्मा बाप का, भले रखो, अच्छी तरह से रखो, बड़े बड़े रखो, लेकिन फोटो कॉपी तो करो।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।
4: जुदा न थे न जुदा रहेंगे, विदा न होंगे न विदा कहेंगे, धरती गगन हो मधुबन वतन हो, बाबा दादी संग सदा रहेंगे, बाबा दादी संग सदा रहेंगे। याद में बाबा के सदा मगन, ओ दादी आपका यही कथन, ओ दादी आपका यही कथन।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: कर्नाटक में बाप दादा ने देखा है कि फारस क्वालिटी बन सकते जितने फारस क्वालिटी भले तो चार स्थान और भी है उसकी बात नहीं करते, लेकिन कर्नाटक के धरनी से फारस बहुत निकल सकते। ताली नहीं सब बजाना, निकाल के दिखाना है। नजर पड़ती है लेकिन टीचर्स की नजर नहीं पड़ी है। सुना पांडव, सुना पांडव, बहुत निकल सकते हैं। बाप दादा को कोने कोने में याद आते हैं। यज्ञ कर्नाटक के वारिस चला सकते हैं। क्या समझा? अभी निकालना और बहुत सहज निकल सकते, सिर्फ अटेंशन नहीं दिए, जनरल सेवा में लग गए, पर्सनल सेवा।

0: क्या समझते हो सकता है ना, हो सकता है। अच्छा 6 मास देखेंगे, 6 मास का टाइम दे रहे हैं। देखो कहाँ से बाइक ज्यादा निकल सकते हैं, कहाँ से बारिश ज्यादा निकल सकते हैं। हाँ होना ही है, जब समय समाप्त होगा तो सब निकलेंगे ना, निकलेंगे जरूर। सुना सिर्फ कांध नहीं हिलाना करके देखा ना, कर्नाटक वाले कांध बहुत अच्छा हिलाते, ऐसे ऐसे करते अच्छा कर।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: तो रोज अमृत वेले के बाद देखना, बाप दादा चक्कर लगाएगा, देखेंगे सभी को। तो क्या दिखाई देंगे?

Dzieciami.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम। सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बाप दादा ने देखा जो बाप दादा ने समय पर तो समय प्लान दिया है, वो बच्चों ने बड़े विधि उत्साह से किया है, कर रहे हैं। इसके बाप दादा सभी बच्चों को

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: मन में बहुत कुछ आपके भरा हुआ है, बाप दादा के पास मन को देखने का टीवी भी है, यहाँ ये टीवी तो सिर्फ पैर का शिकल दिखाती है ना, लेकिन बाप दादा के पास हर एक के हर समय के मन के गति का यंत्र है। तो मन में बहुत कुछ दिखाई देता है, जब मन का टीवी शक्ति हो जाते हैं। अभी कर्म तक लाओ, वाणी तक लाओ, चेहरे तक लाओ, चलन में लाओ, तभी सभी कहेंगे जो आप एक गीत है ना, शक्तियां आ गई। सब शिव की शक्तियां है, पांडव भी शक्तियां हो, फिर शक्तियां शिव बाप को प्रतिज्ञ करेंगी। छोटे छोटे खेल बाल बंद करो, आप वान परस्त स्थिति को इमर्ज करो। बाप दादा सभी बच्चों को सितारे देख रहे, कोई भी बात आवे और ये स्लोगन याद रखना, परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

संतुष्ट रहने वाली। संतुष्ट मणियों को

संतुष्ट आत्मा। मैं संतुष्टता का नेचर

そっとしてあげる。

そっとした。

కెత్తుని పీపిస్తుంది. Yeah.

Jack. And the poker nickel die. Apne. Is the

Trump.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा एक एक बच्चे के मस्तक में संपूर्ण पवित्रता की चमकती हुई मणि देखने जाते नैनों में पवित्रता की झलक पवित्रता के दो नैनों के ताड़ी रुआनियत से चमक Bye.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: कुमार भी कम नहीं है। कुमार अभी सुकुमार बन गए हैं और कुमारों के बिना से

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: अचानक की वार्निंग

0: इसलिए अभी बाप दादा हर बच्चे को एक स्वमान देते हैं। हर बच्चा संकल्प किया और हुआ, इसको कहा जाता है दृढ़ संकल्प। कहते हैं दृढ़ संकल्प किया लेकिन दृढ़ता माना ही सफलता। अगर सफलता नहीं है तो दृढ़ता नहीं कहेंगे। तो आप दृढ़ता भाव ये अपना विशेष स्वमान रोज अमृत वेले स्मृति में लाना और उस विधि पूर्वक आगे बढ़ना।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा दिखते हैं, माता है जय पांडव। बाप दादा के सर्व संबंधों से प्यार तो सर्व संबंधों से है, लेकिन किसको कौन सा विशेष

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: लक्षण विशेष

Nash.

Ножка.

अच्छी तरह से कर सकते।

शीश बाप का वरदान है। सफलता आपका जन्म सिद्ध

सहजन बोती करत।

Swatchan.

jahat. Orang jahat kiona. Jadi apa nih tadi kau dek?

Et c'est les mamans.

0: शरद का समय, बहुत थोड़ा है।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा ने पहले भी कहा है, रोज अमृत वेले अपने आप को तीन बिंदियों का स्मृति का तिलक लगाओ तो एक खजाना भी व्यर्थ नहीं जाएगा। हर समय हर खजाने जमा होता जाए। बाप दादा ने सभी बच्चों का चार्ट देखा, जमा कितना है, हर खजाने का चार्ट देखा तो क्या देखा कि अभी तक भी जमा का खाता जितना होना चाहिए उतना कम है। समय संकल्प बोल व्यर्थ भी जाता है। समय का मैं तो चलते चलते कभी कम इमर्ज रूप में होता है। अगर सदा समय का मैं तो याद रहे इमर्ज रहे और ज्यादा सफल बना सकते हो। सारे दिन में साधारण रूप से समय चला जाता है। गलत नहीं लेकिन साधारण ऐसे ही संकल्प भी बुरे नहीं चलते लेकिन व्यर्थ चले जाते। एक घंटे की चेकिंग करो, संकल्प कितने साधारण जाते जमा नहीं होते। फिर बाप दादा इशारा भी देते हैं तो बाप दादा को भी से बहुत देते बाबा ऐसे थोड़ा सा संकल्प है बस, बाकी नहीं संकल्प में थोड़ा चलता है संपूर्ण हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। अभी अंत थोड़ी है, थोड़ा समय तो पड़ा है तो समय पर किया है कि जमा बहुत समय का चाहिए, जमा का खाता अंत में संपन्न करेंगे। समय आने पर बन जाएंगे। बहुत समय का जमा हुआ, बहुत समय चलता है वर्षा लेने में। तो सभी कहते हैं हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे अगर हाथ उठवाएंगे, कि त्रेता युग ही बनेंगे। तो कोई नहीं हाथ उठाता, और लक्ष्मी नारायण बनेंगे तो सभी हाथ उठाते। अगर बहुत समय का जमा खाता होगा तो पूरा वर्षा मिलेगा, अगर थोड़ा सा जमा होगा तो फुल वर्षा कैसे मिलेगा। इसलिए सर्व खजाने

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ, याद आ रहा है परम धाम, अनादि काल से सर्व

什么

अच्छा देख लिया आपने पूजा।

0: सारे क्लब में ये रूहानी रॉयल्टी चलती रही है।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: कहीं जब का थोड़ी बहुत हलचल होती है ना तो घबरा जाते हैं, बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, गहराई में नहीं जाते, घबरा जाते। अगर गहराई में जाए ना तो कभी भी कितना भी बड़ा हलचल वाला पेपर हो या बात हो, लेकिन गहराई में जाने वाले जैसे समुद्र होता है ना, तो समुद्र के तले में जाने वाले बहुत माल लेके आते हैं, ऊपर ऊपर वाले नहीं, ऊपर वालों को तो मछली मिलेंगी, लेकिन गहराई में जाने वाले बहुत चीजें ले आते। यहाँ पे कोई भी बात होवे, बातें तो आएंगी, ये बाप दादा नहीं कहेगा बातें आएंगी नहीं। जितना आगे जाएंगे उतने सूखम बातें आएंगी, क्योंकि पास में दानर होना है ना। घबराओ नहीं, बाप दादा को उस समय भूल जाते हो, अकेले बन जाते हो ना, तो छोटी बात भी बड़ी बात लगती है। बाप दादा कंबाइंड है, कंबाइंड रखो, अनुभव करो तो देखो पहाड़ भी बन जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। कितने बारी पास हुए हो, कितने क्लब पास हुए हो पता है नशा। अनेक बार मैं ही पास हुआ हूं, अभी रिपीट करना है, नई बात नहीं है, सिर्फ रिपीट करना है। ये स्मृति रखो।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: समय अनुसार बाप दादा समय की वार्निंग तो दे रहे, तो जैसे जीत हो गई।

0: स्थान पर रहते भी जब लोग देखेंगे कि ये इतने रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं, प्रवृत्ति संभालते हैं, घर बार छोड़ के नहीं गए,
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

isso é bastante raro até achar.

0: Espérate.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

was sick.

Este

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: लोग सेवा में नवीनता क्या लाएं, जो अभी तक सेवाएं चली हैं उसके अलावा अब नयापन क्या लाएं? संदेश तो बहुत मिल गया सबको, बहुत जा भी रहा है और मिल भी गया।
2: अभी नजदीक आना, कम से कम स्टूडेंट नहीं बने लेकिन आने वाले, मिलने वाले, सुनने वाले तो बने, कम से कम बोलने तो बने।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
3: सत्यम शिवम सुंदरम,
4: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सभी पूछते हैं आगे क्या करना है, बाप दादा का संकल्प है कि अभी ज्यादा में ज्यादा बने बनाई स्टेज पर चांस लो और उनको सहयोगी बनाओ और आप सकाश दो। दूसरों का भाग्य बनाओ, भाग्य बनाने का चांस दो उनको। भाग्य बनाने के लिए सिर्फ स्वयं आज कौन सी दो, एक तो रहम दिल बहुत बनो, कि ब्याह के बाप के साथी बनो, शक्तिशाली से वायुमंडल ऐसा बनाओ जो स्वयं ऑफर करे, ऐसे ऑफर चारों ओर आवे, हर जोन में ऑफर आवे, ये सुतई प्रसिद्ध हो जाएगा। अभी उनों का भी सहयोगी सनई बनने का चांस दो, उनों को भी चांस दो क्योंकि बाप दादा ने देखा है कि सनई सहयोगी हर जोन में यथाशक्ति है, लेकिन उनों को सेवा के साथी बनाओ, उनों को भी उमंग उत्साह के पंख दो, है चारों ओर, क्योंकि बाप दादा चक्कर तो लगाते हैं ना, तो अपने बच्चों को भी सहयोगी तो ये वर्ष को निमित बनाऊं, सनेही सहयोगियों को उमंग उत्साह में लाऊं। लाना पड़ता है, नहीं तो वो भी आपको लेना देंगे कि आपको तो आपने बताया ही नहीं कैसा भी कर सकती है। इसलिए आप चांस देने वाले बनो।
2: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

Christian. Sarva Shaktivan. Satya.

vinagre ordenga kya vinagre tak bhi hamara number nahi hai number to hona chahiye lekin pehle bhi baap dada ne suna ki agar stage par number aa gaya योग्य है चांस मिलता है तो खुशी से करो लेकिन ये संकल्प करना भी मांगना है चाहिए चाहिए ये रायल सुनाती है तो इसीलिए

रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

Schumbul, Vater.

0: चाहे कहाँ भी सेवा के लिए जाते हो तो ये चेक करो कि साथी संतुष्ट रहे, क्योंकि सेवा की सफलता है संतुष्टता का फल प्राप्त हो, खुशी प्राप्त हो।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: जो भी जितने भी आपके सेवा साथी हैं, उन्हों को सदा अपने खुशी और प्राप्ति द्वारा संतुष्ट रखना अगर सीखा भी देते हो तो सिक्का के साथ सने भी देना, जिससे वो सने के आधार से अपने को आगे बढ़ा सके। ऐसा सने नहीं देना जो वो सने का लाभ उठावे, जो भी करो फिर ऐसा सने नहीं देना। बाप दादा खुश है छोटे मित बने हैं, अटेंशन देते भी है, लेकिन और अटेंशन देंगे, संतुष्ट भी करो और विश्व को संतुष्टि का पहुंचे, ये भी कार्य निमित्त वालों को करना है। उसका कारण कि जो निमित्त है उन्हों को अपने अपने हैंड्स के संस्कार परिवर्तन कराने में थोड़ी मेहनत करनी पड़े। सेवा कराते हो, रहने खाने का प्रबंध मेजॉरिटी सेंटर देते, लेकिन उन्हों में शक्ति ऐसी बनो जो बाप से शक्ति ले आपके सेवा स्थान का वायुमंडल ऐसा बनाए जो भी आवे वो पहले तो वायुमंडल के आकर्षण में आ जाए। क्योंकि आजकल सब यही चाहते हैं कि ऐसे कोई कार्य हो जो आने से ही अनुभव हो कुछ, देखने से ही अनुभव हो। Name it.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਵਾ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ।

la cao.

sat

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: निकली, लेकिन वो जमा करने की वित्तीय मंशा वाचा कर्मणा पवित्रता फाउंडेशन पवित्रता सेवा में भी फाउंडेशन पवित्रता स्वच्छ साफ और कोई भी भाव मिक्स में भी पवित्रता भावना में भी पवित्रता।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: साथ साथ

जल्दी से।

amigo o parte yo. Yo ni me dejé. Peace.

し。

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।